परम सत्कारयोग गुरु की साजी निवाजी गुरु प्यारी गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी सारे गज बज के फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुगे टल चावर तखत छतर दे मालक गुरता गद्दी ते सुभायमान जाग दी जोत धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी ने बड़ी अपार कृपा रहमत बख्शिश की है जो अज इस पावन दरबार दे विच दो परिवारों का सुमेल हो जा रहा है। इस खुशी के मौके पर दास खालसा दीवान सोसायटी गुरद्वारा साहिब सुख सागर के समूह सेवादारा वालों आप दूर नेड़े आए सारे पतवंते सज्जणा का तह दिलों धन्यवाद अते निघा जीओ कर रहा है। ऑन बिहाफ ऑफ खालसा दीवान सोसायटी गुरद्वारा साहिब सुख सागर आई वुड लाइक टू वार्मली वेलकम ईच वन ऑफ यू हु केम ऑल द वे टू ब्लेस दिस ब्यूटीफुल कपल हु इज नाउ सिटिंग इन फ्रंट ऑफ श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर बीइंग हियर फॉर कमिंग हियर टुडे एज यू विटनेस टू सोल्स मर्जिंग इन टू वन इन द प्रेजेंस ऑफ आवर इटर्नल गुरु। सो साध संगत जी एज वी आर सिटिंग इन दिस दरबार it becomes a collective responsibility to maintain the integrity and decorum of this darbar which means absolutely no talking, listening to the kirtan and paying attention. For your convenience and to help you connect more deeply, we've got screens on both sides. For those who can read the Gurbani, please try to read and sing along. And for everybody else, and for those who may not understand the actual words, we've got translations in English too. साध संगत जी सब तो पहला जरूरी बेनती है अपने निजी विचार ने गल्लां बातां नूं कृपा करके संकोचन की कृपालता करो चुप दा दान बख्शिश करो। जितना भी समा असी सतगुरां दी गोद विच बैठना है ये ख्याल जरूर होना चाहिए कि सतगुरां दे सत्कार नूं मुख रखदे असी अपनी गल्लां बातां नूं संकोच के पूर्ण ध्यान जिहड़ा है वो शब्द दे विच जोड़न दा यतन करना है। जिथे असी सतगुरां दे चरणां विच सुभाग जोड़ी दे आने वाले भविख दे लई अरदास बेनती करनी है उत्थे ही असी सतगुरां पास अपनियां झोलियां भी खुशियां ते खेड़ां दे नाल भर के लिजाणियां ने। इस करके जिन्हां गुरमुखां नूं बाणी पढ़नी आउंदी है जां बाणी कंठ है वह भी नाल नाल गुरबाणी दे कायन करन। बाकी संगतां वास्ते स्क्रीनां लगियां ने आप जी फॉलो कर सकते हो। आओ दोनों ही परिवारों की जानकारी दास साहब जी ने सन्मुख रख रहा है। काका जी गोपाल सिंह खंगूड़ा सुपुत्र सरदार सोहन सिंह जी खंगूड़ा अते माता जी कश्मीर कौर खंगूड़ा परिवार दा पिछलेरा पिंड पिंड बदोवाल जिला होशियारपुर पंजाब अते इस वक्त यह परिवार सरी बीसी का निवासी है। गोपाल सिंह दे दादा जी सरदार भाग सिंह जी खंगूड़ा अते दादी जी दा नाम माता रतन कौर खंगूड़ा है। इन्हां दे नाना जी सरदार सोहन सिंह जी शेरगिल अते नानी जी दा नाम माता हरबंस कौर शेरगिल है। सो यह सी लड़का परिवार। कमिंग टू द ब्राइड बीबा जी हरजोत कौर मंजल सपुत्री सरदार परमजीत सिंह जी मंजल अते माता जी हरजिंदर कौर मंजल परिवार दा पिछलेरा पिंड पिंड ढोलन जिला लुधियाना पंजाब अते इस वक्त यह परिवार न्यू वेस्टमिंस्टर दा निवासी है। हरजोत कौर दे दादा जी सरदार प्रीतम सिंह जी मंजल अते दादी जी बीबी नसीब कौर मंजल इन्हां दे नाना जी दा नाम सरदार हरदीप सिंह जी गरेवाल अते नानी जी का नाँ बीबी करनैर कौर गरेवाल हैं। सो यह सी दोनों ही परिवारों की संखेप रूप से जानकारी। हुण साध संगत जी आरंभता की अरदास होगी जिस विच सुभाग जोड़ी गोपाल सिंह हरजोत कौर अते इन्हां दे जो माता पिता हैं अपने अपने स्थान उपर खड़े होकर के हाजिरी लवाउणगे। बाकी साध संगत दे चरणां विच बेनती है कि अपने अपने स्थान उपर सजे रहो। सो मैं बेनती करूँगा सुभाग जोड़ी अते इन्हां दे माता पिता खड़े हो जाण। I'm going to ask the couple and their parents, wherever they're sitting, please stand up for the Ardaas. Ardaas is seva nibhare ne Gyani Harbans Singh Ji, Head Granthi, Gurdwara Sahib Sukh Sahib Guru Granth Sahib Kuran Mukhwa Gyani Surinder Singh Ji, aap nu sarvan karaunge. Aao, Prem Sat Hajri Lavaiye Ji, Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh.

मनमुख मैली कामनी कुलखनी कुनार पिर छोड़िया घर अपना पर पुरखे नाल प्यार तिसना कदे न

ओंकार सतगुरु प्रसाद श्री रा कवि जियो का एक समाइन के करे गावना जननी जानत सोत वड होत है इतना को ना जाने जे दिन दिन अवत कटत है मोर मोर कर अधक लाड तर पेखत ही जम राहो हसे ऐसा ता परम लाया कैसे बुझे जब मोया है माया रहो कैत कबीर छोड़ विखिया रस इत्ते स

मन प्रगट पिया है पेखियल धर्म राओ तै तै कर दल करन महाबली तिन अगलड़े मैं रह न जाए जे को मुँह अपदेश करत अपदेश करत।

अचरजे को सुनो रे पंडिया, अब कुछ कहना जाई। सोर नार गान गंधराब जिन मोहे, तेरे पियो तेरी पवन मखेली लाई। राजा राम अनहद किंगरी वाजे, जाकी दृष्ट नाद लिव लागे। रहो पाठी गगन संगिया अर चंगिया, कनक कल सेक पाया। तिसमें तार चोए अत निर्मल, रस में रसन चुआया। एक जो बात

दयाल दया प्रभ तारी, मलहों में बिखिया सब निवारी, नानक हट पटन बिच का

मिल संगत मन नाम बसाई, हर प्रभ अगमे अगोचर स्वामी, मिल सतगुर हर रस की तेजियो, धन धन हर

खाट शास्त्र बिचरत मुख ज्ञाना, पूजा तिलक तीर्थ इस नाना। नबली कर्म आसन 84 इनमें सा

नाव चोज तमासे नाव नानक किने पोगा जियो माज महला पंजवा सगल संतन पे वास्ते एक मांगो करूं बनंती मानती आगो बार बार जाई लख बरिया दियो संतन की तूड़ा जियो तुम दाते तुम पुरख बदाते तुम समर्थ सदा सुख दाते सबको तुम ही ते बरसावे अवसर करो हमारा पूरा जियो दर्शन तेरे पवन पनीता आत्म गढ़ बिखमकति नियति नाही जीता तुम दाते तुम पुरख बदा।

गावे जो साहिब तेरे मन पावे। तू संतन का संत तुम्हारे संत साहिब मन माना जियो। तू संतन की करे प्रीत पाला संत खेले तुम संग गोपाला। अपने संत तुद खरे प्यारे तू संतन के प्राणा जियो। उन संतन के मेरा मन करवाने जिन तू जाता जो तुद मन पाने। तिनके संग सदा सुख पाया हर रस नानक त्रि

अवर साध चख सगले देखे मन हर रस सब ते मिठा जियो जो जो पीवे सो तृपतावे अमर होवे जो नाम रस पावे नाम नदान तिसे प्राप्त जिस शब्द गुरु मन।

उठत बैठत सोबत जागत हरते आइए सगले अब रद्दा जियो नाम औखद मुको साधु दिया किल बिख काटे निर्मल थिया आनंद पिया निकसी सब पीड़ा सगल बनासे दरदा जियो जे सका आंग

तड़के सेवक हर रंग माने, जोगीच ठाकर का सो सेवक का, सेवक ठाकर ही संग जहार जियो। अपने ठाकर जो पहराया, बोर्ड ना लिखा पूछ बुलाया, तीस सेव के नाने करवानी, जो गहर गंभीरा गहोर जियो। माज महला पंजवा, सब कुछ घर में बाहर नाही, बाहर टोले सो परम पलाई। गुर प्रसादी जिनी अंतर पाया, सो अंतर वार सहेला जियो। चिम चिम वसे अमृत तारा, मन पीवे।

दया तारी तिन सिर जन हारे, जी जंत सगले प्रत पारे। मेहरबान करपाल दियाला सगले त्रिपति अगाए जियो, बंतंत्री पवन की तोन हरिया, कारण हार खिन पीतर करया। गुरमुख नानक तिसे अराधे।

गुण गापत मन हरिया होवे, कथा सुनत मल सगली खोवे, पेटत संग साध संतन के, सदा जपो दियाला जियो, प्रभ अपना सास सास समारो। ए